0: तू जाने है तो
1: तू जाने है तो
2: Hi, Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi, Sherman.
3: Hi.
2: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
4: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ.
2: डाइटिंग? लगता तो नहीं.

इस देश का बचपन भूलता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें

ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

0: Gianna Radio, तू जाने ये तो मैं फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: बाह बाह बाह, तुहार जवाब नाही,

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

जोड़ी अनवी से आप सुने सुपर हिट सॉन्ग तेरी अखिया का जो काजल मुझे तरपावे मॉय उजाला रेडियो पर आप सुने हैं इस गीत को एंड न्यू मरहूम नदीम खान जी

दो घड़ी। अभी आप गीत को सुने मरहूम नदीम खान साहब की आवाज में उजाला रेडियो पर। और अब किरण केदार, मैं दिल था अकेला अकेला।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुझसिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझे।

बिनको ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

की रो रहा हूं मैं। या मोय है अंकित तिवारी, अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म आशिकी 2 की सुन रहा है ना तू कि रो रहा हूं मैं। सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जुबिन नौतियाल की आवाज में अब गीत पेश है, सुनिए।

एंड तुझे कितना चाहे और हम, जुबिन नौटियाल की आवाज, फिल्म कबीर सिंह का गीत और उजाला रेडियो, और हम और आप

Ash King and Shasha तिरुपति से गीत को आप सुने फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड अनु अरिजीत सिंह

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
4: वेलकम टू उजाला रेडियो, आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन।

उजाला ला रहे हैं जोंदा 1 नवंबर को जबरदस्त दिवाली कॉन्सर्ट और फकल ऑफ तो आपके लिए लाइव ऑन स्टेज रविंद्र सिंह बेदी मैट आविष्कार ऑर्केस्ट्रा टिकट वक्त पे आप खरीद लेना geen staspas korting टिकट दाम vanaf €15 koop je tickets via meervaart.nl

एक तेरा साथ और हमको दो जहां से प्यारा है, लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से गीत आप सुने, फिल्म वापस से निकाला हुआ। और सुनने वालों, उजाला रेडियो, आपको मालूम है ना कि खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अभी आपने सुना करण औजला का तौबा तौबा, फिल्म बैड न्यूज से। बोलचाल की यह छोटी सी पुकार भी कितनी रंगीन है, कभी हैरानी जताती है, कभी मुस्कान के साथ निकल जाती है।

नाम में ही एक चौंकती हुई पुकार है। ऐसी छोटी अभिव्यक्तियां बातचीत को कितना अपना बना देती है। कहीं कोई लंबा वाक्य नहीं, बस अचानक निकली हुई बात। इसी सहजता में बड़ा मजा है।

तैयार होने का भी अपना आनंद है। कपड़े चुनना, आईने के सामने एक बार ठहरना, फिर अपने कदमों पर भरोसा करना। कभी किसी बड़े आयोजन से पहले ही यह छोटी सी खुशी शुरू हो जाती है। अब उसी उत्सव वाले ख्याल के साथ सुनिए।

सारी रात नाचने का ख्याल अपने आप में एक बड़ा न्योता है। घड़ी को कुछ देर भूलकर सिर्फ उस अवसर का आनंद लेना, शीर्षक में बसी इस बेफिक्री की बात ही कुछ और है।

यू आर लिसनिंग टू उजाला रेडियो। सौ तरह के ये शब्द कितनी संभावनाएं खोल देते हैं, एक ही बात कहने के कितने अंदाज हो सकते हैं, और किसी की बातों में खो जाने का भी अपना आकर्षण है। अब सुनिए, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

किसी से बातचीत खत्म होने के बाद भी उसकी कहीं कोई छोटी सी बात याद रह जाती है। फिर वही शब्द किसी खाली पल में लौट आते हैं। बातों में उलझने का यह ख्याल कितना परिचित लगता है। कभी बातचीत का सबसे प्यारा हिस्सा उसके बाद की मुस्कान होती है।

0: इस नाम में एक हल्की सी चंचलता है, जैसे प्यार की बात को बहुत गंभीर बनाए बिना भी कहा जा सकता है। आगे फिल्म बैड न्यूज से सुनिए मेरे महबूब मेरे सनम।
1: वाह।

महबूब, किसी प्रिय के लिए कितना आत्मीय संबोधन है। रोज की बातचीत में ऐसे शब्द कम सुनाई दें, फिर भी इनमें एक अलग नरमी रहती है। कभी किसी को नाम से बुलाना अच्छा लगता है, कभी उसे प्यार का एक नाम देना। इस छोटे से फर्क में भी बहुत अपनापन है।

अगले शीर्षक में नृत्य से जुड़ी एक छोटी सी चीज का नाम है। घुंघरुओं का ख्याल आते ही कदमों और अभ्यास की तस्वीर सामने आती है। मंच पर पहुंचने से पहले की तैयारी भी उस कला का हिस्सा है। अब सुनिए घुंघरू।

आज की रात, ये तीन शब्द किसी अवसर को खास बना देते हैं। कल की योजनाएं अपनी जगह हैं, अभी का यह समय अपनी जगह है। इसी नाम वाला गीत अब फिल्म स्त्री 2 से सुनिए, आज की रात।

इन गीतों के साथ समय बिताने के लिए आपका धन्यवाद। संगीत कभी उत्सव का रंग देता है, कभी एक शांत मुस्कान। इसी अपनापन भरे एहसास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू उजाला रेडियो। अंत में फिल्म पुष्पा टू द्रूल से सुनिए अंगारों।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

उजाला ला रहे हैं जोन 1 नवंबर को जबरदस्त दिवाली कॉन्सर्ट और फकल ऑफ तो आपके लिए लाइव ऑन स्टेज रविंद्र सिंह बेदी मैथ आविष्कार ऑर्केस्ट्रा टिकट वक्त पे आप खरीद लेना geen staspas korting, tik de dame vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन उजाला .net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

करके छोड़ोगे, लगता है यूं हमको। लता जी के साथ किशोर कुमार से गीत आप सुने, फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

लेकर हम दीवाना दिल मिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। आशा जी एंड किशोर कुमार, इन दोनों से आप सुने और फिल्म का नाम यादों की बारात। अगला गीत भी किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे।

फिल्म यादों की बारात और गीत के गाने वाले आशा भोसले एंड किशोर कुमार एंड अब अगला गीत हेमलता एंड शैलेंद्र सिंह से

रहे हो यहाँ उजाला रेडियो पर। एंड गीत आप सुने हेमलता एंड शैलेंद्र सिंह से, फिल्म का नाम अखियों के झड़ों को से।

फिल्म विवाह का गीत आप सुने उदित नारायण एंड श्रेया घोषाल से, और ये उजाला रेडियो का प्रोग्राम है।

नजर न लग जाए। एक गीत जो फिर से सजाए और गाए गए, इस बार जावेद अली की आवाज में गीत आप सुने। और अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है अलका जी।

तू ने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी, अलका जी, फिल्म हमराज का गीत। और अब प्रोग्राम का इस हिस्सा में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे और ये होंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: Yes, you said good. This is Ujala Radio, the beat for news.

मजा लुटा ना करो, हो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की। इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक दौड़े।

ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मैं